चिदंबरे सा चिदंबरे सा, पतंजलि बुली मुनि करुली अपरदा, पाडुम अन्बर्क अरुली अवरदा, शिव शिव शंकर शिव शिव शंकर शिव शिव शंकर शिव शिव शंकर अरुळुम पोरुळुम अळ्ळित्त।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।